0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Allad pakka.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras,
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: Hello, Bananas.
1: 91.2 FM. Hello, Bananas.
2: Allad pakkal guru.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: मंगलवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM। हेलो बनारस दुहावली।
1: तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुवे सुलुने निदान। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है, जिसमें ये किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेंगे। भाव ये है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ फल मिलेंगे, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा।
2: हमारे अगले भजन में भक्तिमय शब्दों, श्रद्धायुक्त भावों और संगीत के स्वरों का अद्भुत संगम है। संगीत के सातों स्वरों में उस परब्रह्म और शक्ति के ही दर्शन होते हैं। तो आइए हम अपने मानस कलशों में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के त्रिवेणी का पवित्र जल भरकर शिव द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए उनका अभिषेक करें। शिव भक्त कांवरिया अपनी कांवर में गंगा जल भरकर अभिषेक करने शिवजी के द्वार जाते हैं। इसी पर आधारित एक भजन प्रस्तुत है जिसे अनुराधा पौडवाल जी ने स्वर दिया है।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में भोग विलास के झूठे छलावे से भरे सुख के पीछे दौड़ते लोग अपने इष्ट देव को भूल जाते हैं और नतीजे में वे पाते हैं पापों का अंबार। यही पाप का अंबार व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सामने आता है। ऐसे कष्ट का एक रूप है शनिदेव का प्रकोप। शनिदेव की कुदृष्टि उसी व्यक्ति पर पड़ जाती है जो भगवान को भूल जाता है, क्योंकि भगवान को भूल जाने वाले को उसके पाप का दंड देने का काम विधाता ने शनिदेव को सौंपा है।

0: मंगलवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM।
1: हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
4: मंगलवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM।

0: download from apnafm.com.
1: 91.2 FM, hello Banaras, pakka Banarsi,
2: pakka Banarsi.
3: नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे दस गुण। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम का नाम अंक है और सब साधन शून्य है। अंक ना रहने पर तो कुछ भी हाथ नहीं लगता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वे दस गुने हो जाते हैं। परंतु राम नाम से ही जो साधन होता है वह कुछ फल नहीं देता।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
2: पक्का बनारसी।

0: बनारस दोहावली।
1: इस संसार में हर इंसान किसी न किसी नशे का गुलाम बना हुआ है। किसी को धन दौलत का नशा है, तो किसी को रूप सौंदर्य का। कोई अपने नाम के घमंड में फूला नहीं समा रहा, तो कोई अपनी शारीरिक शक्ति के नशे में चूर है। लेकिन जिसका मन फकीरी के नशे में लग चुका हो, उसके सामने संसार के सारे नशे व्यर्थ हैं।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, दुहावली।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: हमारा जीवन क्षण भंगुर है, हमारा शरीर नाशवान है, ये नश्वर शरीर एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा और प्राण पखेरु पवन समान उड़ जाएंगे, तो फिर अभिमान किस बात का।

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
2: स्वार्थ सुख सपने हूँ अगम, पर मारथ ना प्रवेश। राम नाम सुमरत मिटहीं, तुलसी कठिन कलेश। जिन लोगों को संसारिक सुख सपने में भी नहीं मिलते, और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में जिनका प्रवेश नहीं है, तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करने से उनके भी कठिन कलेश मिट जाते हैं। हेलो बनारस, दुहावली। ईश्वर की ओर
3: उपासना।
4: गुरु वाणी।
5: प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भोक्ता और कर्ता भाव बना रहता है, या अहंकार के कारण। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। अनन्य चेता सततम युमाम स्मरत नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। अब यहाँ ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतु विषयान पुंशः। प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवती के स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा, ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है, वो विषय चिंतन ही करता है, ऐसा नहीं कह रहे। स्वाभाविक होता है विषय चिंतन से, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया तो होगा क्या, विषयों को भोगता रहा है, उसी कर्तत्व भोक्तत्व भाव का चिंतन होता रहता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है।
4: गुरु वाणी।
3: ईश्वर की ओर उपासना।
2: सबई कहावत राम के, सब ही राम की आस।

0: राम कही ही जे ही आपनो तो ही भजू तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं सभी श्री राम के भक्त कहलाते हैं और सभी को श्री रामचंद्र की ही आशा है, परंतु हे तुलसी, तू तो उसी का भजन कर जिसको स्वयं श्री रामचंद्र जी अपना भक्त कहते हैं।
1: हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
2: पक्का बनारसी।
3: भगवान का एक रूप है श्याम का, तो दूसरा राम का। आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन श्री राम। राम का काम ही था दीन दुखियों का उद्धार करना, उन्हें संकट से छुड़ाना। भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति कथा सुनते हैं भक्त तुलसीदास जी के ही शब्दों में।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras, Duhawali. ईश्वर की ओर
3: उपासना
4: गुरु वाणी।
5: जब ये प्रभु का चिंतन करता है तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था अब हो तो रहा है। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। ये सबका अनुभव है जो भजन करते हैं, बड़ी जोर से जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो, एक से गंदी मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना ये आपके है, तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे मतलब कुछ नहीं, समझना बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं इस गंदी नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अब ये गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कर रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी। चलने दो नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो सेवा, ये जितनी गंदगी चुप रहो, देखते रहो, उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना ना हर्षित होना है, दोनों बात समझ। खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा, नहीं है उसमें गंदगी, जो धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर, शांत एकदम। बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक, इस स्थिति वाले को एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी डालता है जो संसार में सुखद मानी जाती है, उसमें आपको हर्षित नहीं होना, तटस्थ। यहां तक कि वो भागवतिक बातें भी डालेगा तो आपको भी गंभीर रहना है।
4: गुरु वाणी,
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना।
6: राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिधि बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। गोस्वामी जी कहते हैं, जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ और मोक्ष की आशा करता है, वो तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है।

0: 91.2 FM. Hello Banaras,
1: Pakka Banarsi. Pakka Banarsi.
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना
2: गुरु वाणी।
4: तो जो भगवत आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि विषय चिंतन में राग प्रियता आसक्ति पैदा होती है। जैसे विषय चिंतन होता है, उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता। ऐसा राग प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ? विषय चिंतन से। ध्यान रखना, ध्यायतो विषयान पुंशः संगस्तेषूप जायते। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती है। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना, इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देंगी, और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूंगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ विभीषण के घर में। पूरी लंका राख हो गई, एक विभीषण कर गृह, पूरा संसार जल रहा है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोग, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका धुआं भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान का आश्रय है।
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना।
2: हेलो बनारस, दुहावली।
5: तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसीदास कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर के पार हो चुके हैं।
6: रविशंकर कहते हैं,
7: ऐसे व्यक्ति से जिनका हम आदर करते हैं पर जो हमें अहंकार दिखाते हैं और छोटा महसूस कराते हैं, कैसे व्यवहार करें?
8: जो वो करे वो तुझसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम बैरा हो जाओ उस वक्त। जो तुम्हें छोटा कहता है तुम बैरे हो जाओ, कहीं इधर उधर देखो, आकाश की ओर देखो। जैसे अभी इतने देर में तमिल में बोल रहा था, तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा तो नहीं है?
0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
9: शिवजी तो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग। अकाल मृत्यु से बचने के लिए सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। महाकाल शिव पर भस्म का लेपन करके भस्म आरती उतारने की महिमा यही है कि सारा संसार ही नश्वर है, नाशवंत है। अंत में इसे भस्म होकर पुनः शिव में ही लीन होना है।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras, Duhawali. राम भरत लक्ष्मण ललित शत्रु समन शुभ नाम सुमरत दशरथ सुवन सब पूंजहि सब मन काम। तुलसीदास जी कहते हैं राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम हैं, दशरथ के इन सभी सुपुत्रों का स्मरण करते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
0: 91.2 FM. Hello Banaras. Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.

0: सतगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं,
1: मैं कह रहा हूं कि अपनी उन्नति के लिए एक वातावरण बनाइए। अगर आप अपने अंदर आनंद और श्रद्धा का वातावरण नहीं बनाते, श्रद्धा मतलब किसी चीज के लिए या किसी के लिए नहीं, ये होने का एक तरीका है, ये होने का एक खास तरीका है। श्रद्धा मतलब आप ग्रहणशीलता की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जीवन कृपा से ही सबसे अच्छी तरह घटित होता है। आप लगातार ग्रहणशील बने रहते हैं, आप अपने दिमाग की चीजें निकाल कर किसी पर झाड़ते नहीं फिरते, आप विधाता की बुद्धिमत्ता को अपने में समाना चाहते हैं। कई बार आप प्लान करते हैं, आज मैं इसे अपने दिमाग की ये बात ढंग से बता दूंगा। नहीं, अपनी दिमागी चीजें मत देते फिरिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा।
0: गुरु वाणी 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
2: मंगलवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी आगे।
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिकता की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए, क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ी की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे सुधांशु और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं है, दिल में भी उतरता है।
1: और मैं हूं आपकी आरजे अमीशा। अरे भाई, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह, क्या बात कही अमीशा जी आपने। सच में काशी की गलियों में सुबह सुबह छनती है गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और जलेबी की मिठास, पान की गिलौरियाँ और ठंडाई की ठाट, सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कोई नई कविता लिख रहा है।
1: और अब यही स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है, योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी कि ODOC योजना के तहत काशी के पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी।
1: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं बल्कि दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है। जी हाँ, बनारसी कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही बस भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं है।
0: देशी घी में सना हुआ कड़ा आटा, उड़द दाल की मसालेदार पीठी और धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ियाँ, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना घुघरी और मीठी इमली की चटनी।
1: और भाई, इस साथ में गर्मा गर्म जलेबी भी तो हो जाए तो फिर बनारस की सुबह मतलब सफल हो गई।
0: सबसे खूबसूरत बात है ये कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं।
1: और अब ODOC योजना के तहत इन दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, अब उन्हें सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकी की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन अब उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: और इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच बिल्कुल साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ाना।
1: और यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलइयों और बनारसी पान जैसे व्यंजनों को आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद्य उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सकें।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानदारों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, दुग्ध उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुँचेगा।
0: यानी ODOC वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही है, बल्कि पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत भी सुरक्षित रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब हम बात करते हैं बनारस की शान ठंडई की।
0: अरे बनारस और ठंडई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात बिल्कुल ही अलग होती है।
1: पक्की महल की गलियों में जब सील पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है तो उसकी खुशबू पूरे माहौल को बनारस बना देती है।

0: सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। वाह, आजकल तो मैंगो, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें अपनी मिट्टी की महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगे झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया।
2: मेरा नाम गंगाराम हलवाई है, मेरा 87 से दुकान खुला है। उसके पहले खोए का ये बनता था, अब इसको हम लोग काजू मलाई में कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर बाबा विश्वनाथ के यहाँ आए हैं आप दर्शन करने, जब तक आप ये ना खाएं तो समझिए अधूरा है। बनारस का स्पेशल कृष्णा बर्फी के नाम से हम लोग बोलते हैं, वैसे है ये काजू मलाई की। मैं गंगाराम हलवाई, ये तिरंगी बर्फी मेरा स्पेशल है बनारस का। हम लोग 87 से इसको थोड़ा रेनोवेट करके सुधार कर दिए, जैसे काजू मलाई कर दिए। पहले खोए का बनता था और ये समझिए हमारा फेमस है श्री कृष्ण भंडार के नाम से। मलदैया पर लोहा मंडी में ये दुकान है। काशी का स्पेशल ये है तिरंगा बर्फी मेरा। अगर आप बनारस काशी आएँ तो मेरा ये तिरंगा बर्फी नहीं खाएं कृष्ण भंडार का, तो स्वाद अधूरा रह जाता है। ये बनारस का तिरंगा बर्फी, इसको 3 लेयर में बनाते हैं। 3 तरह का इसमें टेस्ट मिलता है। एक तो केवल काजू का है, बीच में जो है काजू का पेस्ट बना के रखते हैं और ऊपर में काजू मलाई मिक्स करके टेस्ट के लिए अच्छा बनाते हैं। यह है गुरु बनारस का तिरंगा बर्फी। सरकार की बहुत अच्छी योजना है ये, यूपी गवर्नमेंट ODOC योजना के तहत हमारे मिठाई को अच्छा बनाए और प्रचार प्रसार से आगे बढ़ाए। ये सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, ये बहुत अच्छा लगा। और लोकल दुकानदारों के बारे में सोचा, ये बहुत अच्छा लगा। अगर सरकार मीडिया से भी मेरा प्रचार प्रसार कर दे, हमें बहुत अच्छा लगेगा और देश विदेश में मेरा ब्रांड चलता रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना के लिए धन्यवाद। सरकार ने मेरे लिए सोचा, इसके लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद। तिरंगा बर्फी श्री कृष्ण भंडार की तरफ से सरकार को धन्यवाद।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद रंग के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोया से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधिकारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
0: राष्ट्रीय पर्वों में इसकी मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं।
1: अब बारी है उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा है और स्वाद भी, लौंग लता।
0: वाह वाह वाह वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवों का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की एक खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है हमारी लौंग लता।
1: इसका हरने वाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है, जिससे लोग आसानी से खा सके और साथ में पैक करा के घर भी ले जा सके।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पी तो समझिए आपकी बनारस यात्रा अधूरी रह गई है।
3: हमारा नाम प्यारेलाल प्रजापति है, पिताजी का नाम श्री छेदीलाल प्रजापति है और हमने दुकान शुरू किया था 1982 में। छोटी सी गुमटी में दुकान करते थे चाय पान की। उसके बाद सीजन में गर्मी में आता था, गर्मी में लस्सी दही अपना बेचते थे। लस्सी बनाने का प्रोसेस है, मतलब जिसे दही डाल दिए मथनी में, दही के हिसाब से चीनी डाले हैं, उसके बाद बर्फ थोड़ा सा डाले हैं, उसके बाद बना के फ्रीजर में रख दिया जाता है, ठंडा हो जाता है। रबड़ी की वजह से है खासियत, रबड़ी में हम लोग जैसे इलायची, पिस्ता और गुलाब, मतलब आता है गुलाब सेंट आता है। जो लस्सी में हम रबड़ी बनाते हैं ना, मिला जो डालते हैं स्पेशल रबड़ी, उसका बनाते हैं हम, वैसे बनारस में रबड़ी वैसा बनाता नहीं है कोई, जो हम आइटम डाल के बनाते हैं। ज़्यादातर तो यही मई जून और जुलाई इसी मौसम में ज़्यादा होता है, जिसे सावन में सावन भर भीड़ रहेगा, और कोई व्रत वाली त्यौहार आ जाती है उसमें दिन भर भीड़ रहती है लस्सी वालों की। जब भी कोई व्रत का त्यौहार आएगा तो लस्सी का सेल मतलब चौगुना पचगुना हो जाता है। तो हमें पता चला है उत्तर प्रदेश सरकार ये योजना निकाली है ODOC की, उसके तहत हम सोचते हैं कि हमारी भी सामान की मतलब सेल बढ़े, दूर तक जाए, पसंद आए, अपना नाम से ब्रांड बनवा के अपना दूर तक सप्लाई करें, हमारे भी प्रोजेक्ट का मतलब वो प्रचार हो, यही चाहते हैं हम। और हम ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी योजना निकाली सरकार ने कि हम लोगों की कम से कम आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा धंधा करने का, बिजनेस करने का। अगर कोई बनारस में आए लस्सी जब से न पिए, हमारी कचौड़ी जलेबी न खाए, लौंगटा न खाए, तब से बनारस में आना उसका अधूरा हो जाएगा। वैसे भी लोग विश्वनाथ जी से आते हैं तो दर्शन करने जब आते हैं तो ऑटो टेम्पो वाले लेके आते हैं यात्रियों को, यहाँ पे लस्सी पिलाने, समोसा खिलाने, कचौड़ी जलेबी खानी।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथने से खूब फेटा जाता है, फिर उसमें हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर से मलाई की मोटी तह,
0: और कुल्हड़ की वो सौंधी खुशबू, वाह, जैसे मिट्टी खुद स्वाद बन गई हो।
1: ये सिर्फ पेय नहीं, गर्मी से राहत देने वाली बनारस की पहचान है।
0: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान। और भाई, यहाँ का पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
4: मेरा नाम गोपाल है, गोपाल पान भंडार। पान मकई पान में पान बनाया जाता है, पान बनारस की शान है और बनारस की संस्कृति भी है। मकई पत्ता है, सूना है, कत्था है, सुपारी है, नारियल, गुलकंद, मीठा मेवा, चेरी, पान चटनी, मुरेठी, इलाची, ये बनारस का गिलौरी पान है। ये पान एक बार आप खा लेंगे तो बार बार बनारस आएंगे। बनारस का पान मशहूर है, पूरी गिलौरी पान, बनारसी पान पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा फायर पान है, लॉलीपॉप पान है। फायर पान में थोड़ा आग लगा जला करके उसको खिलाया जाता है, लॉलीपॉप में लॉलीपॉप सेफ रहता है। ये पान हम आपको जो दे रहे हैं, ये पान नहीं सिर्फ, ये बनारस की विरासत है, संस्कृति है यहाँ की, और यहाँ के शान है, बनारस का शान, बनारसी पान। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ODOC योजना लेके आए हैं, इससे हम छोटे दुकानदारों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम है, इससे हम लोगों का थोड़ा व्यापार बढ़ेगा। योजना के अंतर्गत हमारी जो छोटी सी दुकान है, इससे बड़े पैमाने पर लोग सभी लोग जान जाएंगे, इससे व्यापार का थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, सबका फायदा होगा। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वाह वाह वाह अभिषेक, क्या बात कही आपने। ताजे मगही पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, साथ में नारियल बुरादा, और फिर प्यार से तैयार की गई उस पान की मीठी मीठी गिलौरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीतों ने भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और इसकी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाइयो, काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबाल कर पूरी रात खुले आसमान में नीचे रखा जाता है, जिससे ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उसे मथ कर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं,
0: इतनी हल्की स्वाद में कि मुंह में रखते ही खुल जाए। यही कारण है कि इसे बादलों की मिठाई भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह कुछ घंटों तक ही मिलेगी, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: दोस्तों, काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास, संस्कृति और पीढ़ियों की मेहनत छुपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इन स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जाएगा।
1: और सबसे अहम बात, गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचेगा।
1: और इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों घाटों की नगरी नहीं है, बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है बनारस।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलइयों में मौसम का जादू है।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेंगे, तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा, बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाएं, तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार,
1: फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।
5: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बाइट्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. शुरू हो चुका है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर. जी हाँ, बज चुके हैं घड़ी में 9, तो इसका मतलब है बिल्कुल साफ कि आरजे सुधांशु आ जाता है अपना लाउड स्पीकर लेकर मॉर्निंग वाला. और आज है मंगलवार, बढ़िया बढ़िया वाला. तो मस्त करेंगे आज हम ढेर सारी बातें, ढेर सारी मस्ती, पूरे पूरे 3 घंटे. तो कहीं जाने का नहीं, बस सुनने का. मॉर्निंग लाउड स्पीकर विद आरजे सुधांशु. बोले तो यही है पक्का बनारसी.

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: पंक्ति यात्रा। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ लगे तो बुरा क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मिर्जा बेग असदुल्ला खान मिर्जा गालिब की है।

0: सी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दो

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: सुनो
3: गलत
2: तो,
3: है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
7: अरे मंजू, गुड़िया को कुदाल लेकर कहाँ भेज रही हो?
8: अरे मास्टरनी जी, घर गांव का काम धंधा नहीं सीखेगी तो ससुराल में गुजारा कैसे होगा?
7: अरे मंजू, देश और समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और तुम हो कि अभी तक ससुराल में ही अटकी पड़ी हो। अब लड़का हो या लड़की, सब पढ़ेंगे एक साथ और गढ़ेंगे नया इतिहास, क्योंकि बनारस में खुल गया है दिव्य डामन पब्लिक स्कूल, जहां मिलती है कम फीस में बेहतर और अच्छी पढ़ाई।
8: ठीक है मास्टरनी जी, मैं आज ही गुड़िया का दाखिला दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में कराती हूँ।
7: ये की ना अच्छी बात।
9: अगर आप भी देखना चाहते हैं अपने बच्चों में नई उड़ान तो आज ही एडमिशन कराएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोशी रोड, पांडेपुर, वाराणसी।
10: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
11: जब स्वच्छता की होगी बात तभी सुधरेगा घर परिवार,
5: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
11: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
5: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
12: क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
13: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
14: अरे भाई और तेज भागा।
4: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
15: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। ओहो, व्हाट अ बिजी डे।
16: डॉक्टर साहब, मेरे फोन का सिम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं?
15: ओह दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यार, अभी तुम्हारा सिम बहुत छोटा सा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, फिर वो चलना भी सीख जाएगा भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।

0: वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और अभी टाइम हो चुका है हैप्पी वाला बर्थडे विश करने का. तो आज है अजीत वाजपेयी जी का हैप्पी वाला बर्थडे, जो रहते हैं पीलीभीत में और वहां पर भी सुनते हैं रेडियो हेलो बनारस 91.2 FM. इनको बर्थडे विश करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है रजत महाजन, सुजीत वाजपेयी, गोपाल गुप्ता, पूर्णिमा त्रिपाठी जी और परवीन न्यास मैडम का. ये सभी करना चाहते हैं अजीत बाबू को हैप्पी वाला बर्थडे विश. तो सुधांशु इनके बिहाफ पर करता है अजीत बाबू को हैट्स ऑफ और इनको हैप्पी वाला बर्थडे विश. और साथ में हेलो बनारस की टीम और सुधांशु

तो ये हो गया अजीत बाबू को हैप्पी वाला बर्थडे विश। अगर आप भी चाहते हैं अपनों को करना विश या देना चाहते हैं बधाई, तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर। हम करेंगे आपके ब्याह पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व। ओनली ऑन 92.2 FM। हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारस है।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
4: पक्का बनारसी।

0: बनारसी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउडेस्ट स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और अभी हमने विश किया है देवेश दत्त मिश्रा जी को, क्योंकि उनका आज है हैप्पी वाला बर्थडे. इनके लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ था बर्थडे विश करने के लिए डॉक्टर शिव सुशील बाबू का, तो हमने इनके बिहाफ पर देवेश दत्त मिश्रा यानी डीडी भैया को कर दिया बर्थडे विश. अगर आप भी चाहते हैं अपनों को विश करना, देना चाहते हैं उन्हें बधाइयां, तो हमें कीजिए 9839912912 पर. हम करेंगे आपके बिहाफ पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर विद आरजे सुधांशु. बोले तो यही है पक्का बनारसी.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: आरसी बाबे एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस पर. और अभी बोले तो टाइम हो चुका है हैप्पी वाला बर्थडे विश करने का. तो आज है दीपक बात्रा जी का हैप्पी वाला बर्थडे, जो रहते हैं अंबाला में और सुनते हैं वहाँ पर भी हेलो बनारस 91.2 FM. इनको बर्थडे विश करना चाहते हैं इनके फैमिली मेंबर्स अनुप्रिया बात्रा, मनन बात्रा, भाविया बात्रा और इनके लगते जिगर, इनके फ्रेंड बोले तो श्री एस के लाल जी यानी श्री श्याम किशोर लाल जी. दीपक बात्रा साहब को करना चाहते हैं हैप्पी वाला बर्थडे विश. हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है 9839912912 पर. हमने इन सभी के बिहाफ पर दीपक बात्रा साहब को कर दिया हैप्पी बर्थडे का विश. दीपक बात्रा साहब है चार्टर्ड अकाउंटेंट और दिल के मामलों में भी अकाउंट उनका बिल्कुल सही रहता है. वैसे सुधांशु और हेलो बनारस की टीम दीपक बात्रा साहब के लिए यही कहेगी.

बत्रा साहब का अंबाला के रहने वाले। हैप्पी वाला बर्थडे विश। अगर आप भी चाहते हैं अपनों को करना विश या देना चाहते हैं बधाइयां तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर। हम करेंगे आपके बिहाव पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु, बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
3: डॉक्टर साहब, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मूड ही नहीं बनता, मैं क्या करूँ?
2: दैट इज अ वेरी कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम इमरान हाशमी के गाने देखा करो, फिर तुम्हारा भी मूड मेरी तरह बन जाएगा भाई।
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
2: ऐसी मरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई।
5: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: सॉन्ग इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9 ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप।
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: अरे सुनो
3: गलत है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
0: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
4: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGHS योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
5: जब स्वच्छता की होगी बात तभी सुधरेगा घर परिवार,
6: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
5: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
6: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
7: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
8: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
7: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
9: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
10: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।

ऐसी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। ओहो व्हाट अ बिजी डे। डॉक्टर साहब मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले जाता हूँ मगर कोई फायदा ही नहीं होता। एज अ डॉक्टर आई सजेस्ट यू कल से तुम 40 रुपए की दवाई ले जाना, पूरे 10 रुपए का फायदा होगा यार। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई।
1: 91.2 FM हेलो बनारस।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। ओहो व्हाट अ बिजी डे।
3: डॉक्टर साहब, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ तभी मेरा साला बीच में आ जाता है, मैं क्या करूँ?
2: व्हाट अ जेठालाल सुंदर वाला क्रश। देखो यार, तुम इस बार ट्रक चलाने का काम शुरू कर दो, शायद इस बार तुम्हारी किस्मत साथ दे दे भाई।
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
2: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे।
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल?
0: सुनो
1: गलत
0: तो,
1: है ये।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
4: जब स्वच्छता की होगी बात तभी सुधरेगा घर परिवार,
5: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
4: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
5: तो सुनना ना भूले। जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
6: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
6: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
0: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
8: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
0: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
9: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
1: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: बॉलीवुड के गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM टू 3 PM एंड 9 PM टू 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
4: आप सभी का स्वागत है हेलो बनारस 91.2 FM। मैं आपका दोस्त होस्ट सुधांशु। शुरू हो चुका है हमारा शो आज का पर्दे के पीछे, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। आज पर्दे के पीछे में हम बात करेंगे 1970 की आई हुई फिल्म जिसका नाम है प्रेम पुजारी, जिसका डायरेक्शन, प्रोडक्शन और राइटिंग का काम किया देव साहब ने, देवानंद ने। और इसमें देवानंद, वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी और उस समय बिल्कुल नए नए आए हुए अमरीश पुरी के साथ मुख्य भूमिका में थे। इसमें संगीत रचना की SD बर्मन ने और गाने लिखे

तो बातें आज चलेंगी सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत गानों वाले प्रेम पुजारी के बारे में, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, विद आरजे सुधांशु, बोले तो बस यही है पक्का बनारसी।

गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे, ओनली ऑन 91.2 एफएम हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1970 की रिलीज हुई फिल्म प्रेम पुजारी। इस फिल्म का संगीत दिया एस डी बर्मन साहब ने और गीत लिखे नीरज जी ने। इसका एक बड़ा ही खूबसूरत गाना, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार।

0: बिल्कुल, वो प्यार ही तो है जो नीरज जी ने लिखा इस गाने को, प्यार से लिखा। प्रेम पुजारी फिल्म से देवानंद साहब ने डायरेक्टर बनने की शुरुआत की और वे अपनी फिल्मों में नए प्रयोग के लिए जाने जाते थे और इस फिल्म में उन्होंने रोमांस के साथ जासूसी और देशभक्ति के रंग को भी जोड़ने की कोशिश की। इस फिल्म का संगीत हिंदी सिनेमा की अमूल्य धरोहर माना जाता है। एसडी बर्मन साहब ने इस फिल्म के लिए अपनी धुनों में एक अलग सा यूरोपियन टच दिया था क्योंकि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा फॉरेन में यानी कि स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली में शूट हुआ था। ये उस दौर की कुछ चुनिंदा फिल्मों में से थी जिसकी शूटिंग बड़े पैमाने पर यूरोप में हुई। खासतौर पर स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए गीत भारतीय दर्शकों के लिए पहली बार उस देश के पसंदीदा नजारे पर्दे पर दिखे। बाद में यश चोपड़ा और अन्य फिल्म मेकर्स ने स्विट्जरलैंड के सीन्स को अपने फिल्मों में लेना शुरू कर दिया। इस फिल्म से शुरुआत हुई थी एक नई हीरोइन की भी। जी हाँ, वहीदा रहमान के अलावा इसमें जहीरा नाम की एक नई हीरोइन को भी लॉन्च किया गया था। जहीरा को देवानंद ने एक कॉलेज फंक्शन में देखा और फिल्मों में ले लिया। हालांकि उनको सफलता ज्यादा नहीं मिली लेकिन प्रेम पुजारी में उनके काम की काफी प्रशंसा हुई। तो बातें हमारी प्रेम पुजारी के साथ यूं ही चलती रहेंगी ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, विद आरजे सुधांशु, बोले तो बस यही है पक्का बनारसी।
1: बॉलीवुड के गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM टू 3 PM एंड 9 PM टू 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।
0: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं प्रेम पुजारी फिल्म के बारे में, इसका एक बड़ा ही मजेदार गाना।

वाह ही खूबसूरत गाना किशोर दा की आवाज में, जो उस समय रेडियो और आज के रोमांटिक गानों की इंडेक्स में सबसे ऊपर रहता है। और नीरज जी को इस फिल्म में गाना लिखने के लिए बहुत सारा सम्मान मिला और अचानक वो बहुत बड़े गीतकार बन गए। शत्रुघ्न सिन्हा उस समय इंडस्ट्री में नए नए आए थे, फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई और एक अपनी अलग पहचान भी बनाई। तो बातें आज चलेंगी प्रेम पुजारी के बारे में, ओनली ऑन 91.2 एफएम। हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु, बोले दो भैया यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्कार, आप सभी को एक बार फिर से हेलो बनारस 91.2 FM और मैं हूँ आरजे सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। आज हम पर्दे के पीछे में बात कर रहे हैं फिल्म प्रेम पुजारी के बारे में, जो 1970 में आई। वास्तव में इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

थी कि ये गाना लता जी की आवाज में हो, उनकी आवाज में बिल्कुल खिला खिला और मासूम सा गाना रहे। उन्होंने लता दीदी से कहा कि गाना ऐसे गाइए जैसे कोई लड़की पहली बार जिंदगी के रंग देख रही हो। इसी कारण से लता मंगेशकर ने इसे बहुत ही नटखट और प्लेफुल अंदाज में गाया। बर्मन दा ने इसमें यूरोपियन फ्लेवर देने के लिए स्ट्रिंग्स और वायलिन का अनोखा इस्तेमाल किया। खास तौर पर इस गाने की शुरुआत और इंटरल्यूड्स में जो हल्के फुल्के गिटार और म्यूजिकल ब्रिज हैं, वो हिंदी फिल्मों के लिए उस दौर के लिए बिल्कुल नए थे। नीरज जी ने शब्द ऐसे लिखे जो फूलों और रंगों की दुनिया को रचते हैं। इस गाने की रचना करते समय नीरज जी ने ये कहा, मैंने इसे ऐसे लिखा है जैसे कोई लड़की सपनों में इंद्रधनुष से खेल रही है। वहीदा रहमान ने भी इस गाने में पूरी तरह से फ्री स्पिरिटेड लड़की का किरदार निभाया। उन्होंने इस गाने में काफी डांस और नेचुरल मूवमेंट्स दिए जो उस समय उनकी इमेज में थोड़ा सा अलग दिखा। यूरोपियन बैकग्राउंड और भारतीय पारंपरिक वेस्टर्न स्टाइल का ये मेल दर्शकों के लिए बड़ा ही नया था और ये गाना लता दीदी के आज भी सबसे प्यारे गानों में गिना जाता है। इसके बोल और संगीत ने इस गाने को एक खुशबूदार और एवरग्रीन एहसास दिया। इसको बनाने में पैसे काफी खर्च हुए, म्यूजिक तो इसका बहुत ही खूबसूरत था लेकिन पिक्चर ज्यादा काम नहीं कर पाई और ये फ्लॉप घोषित हो गई। तो बातें हमारी आज पर्दे के पीछे में प्रेम पुजारी के साथ बस इतनी ही। अगली बार हम होंगे एक नई कहानी, एक नया व्यक्तित्व लेकर। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु। बोले तो बस यही है पक्का बनारसी।

0: होती यात्रा।
1: रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूं मैं। रोक ना पाए जिसको ये सारी दुनिया, वो एक बूंद आंख का पानी हूं मैं। सबको प्यार देने की आदत है हमें, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है हमें। कितना भी गहरा जख्म दे कोई, उतना ही ज्यादा मुस्कुराने की आदत है हमें। इस अजनबी दुनिया में अकेला ख्वाब हूं मैं, सवालों से खफा छोटा सा जवाब हूं मैं। जो समझ ना सके मुझे उनके लिए कौन, जो समझ गए उनके लिए खुली किताब हूं मैं। आंखों से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द सैलाब हूं मैं। अगर रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूं मैं।
0: पंक्ति यात्रा
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
5: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
4: अरे बेटा,
5: ये क्या कर रहे हो अंकल?
4: सुनो
5: गलत
4: तो,
5: है ये।
4: अरे सुनो बेटा
5: अंकल।
6: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
7: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
8: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
9: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
8: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
9: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
10: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
11: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
10: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
12: बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
13: a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
12: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
14: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
15: क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
16: अरे अरे अरे कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
17: अरे भाई और तेज भागा।
6: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
2: 91.2 FM हेलो बनारस,
18: हेलो बनारस।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

पर बरसूं, एक शोक दामन पर बरसूं, अरमान था गुलशन

दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपये का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, जीवन की गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आम

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: पंक्ति यात्रा, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घूमती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी, पता नहीं कहां किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी, या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी, मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा, यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होता है, मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
5: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
6: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
5: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार,
6: तो सुनना ना भूले। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
7: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
8: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
9: अरे भाई और तेज भागा।
10: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
11: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
15: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक थिंकारी नहीं गूंजी।
14: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ, तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: लाइट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 एफएम हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 एफएम हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: पंक्ति यात्रा।
5: तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है।
4: प्रस्तुत पंक्तियां तन्वीर काजी द्वारा रचित है, पंक्ति यात्रा।
6: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। ओहो, व्हाट अ बिजी डे।
7: डॉक्टर साहब, ये जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है?
6: व्हाट अ लॉन्ग लास्टिंग क्वेश्चन। देखो यार, जिराफ की गर्दन इसलिए ऊंची होती है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग राह चलते गले पड़ जाते हैं भाई।
8: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
6: ऐसी मरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
9: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
10: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
9: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
10: ड्रो आज्ञा महाराज।
9: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
10: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
11: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
2: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
2: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
2: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
1: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
2: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
1: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
2: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
1: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
2: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
1: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
3: पंक्ति यात्रा।
4: रख सको तो एक निशानी हूँ मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूँ मैं। रोक ना पाए जिसको ये सारी दुनिया, वो एक बूंद आंख का पानी हूं मैं। सबको प्यार देने की आदत है हमें, अपनी अलग पहचान बनाने की आदत है हमें। कितना भी गहरा जख्म दे कोई, उतना ही ज्यादा मुस्कुराने की आदत है हमें। इस अजनबी दुनिया में अकेला ख्वाब हूं मैं, सवालों से खफा छोटा सा जवाब हूं मैं। जो समझ ना सके मुझे उनके लिए कौन, जो समझ गए उनके लिए खुली किताब हूं मैं। आंखों से देखोगे तो खुश पाओगे, दिल से पूछोगे तो दर्द सैलाब हूं मैं। अगर रख सको तो एक निशानी हूं मैं, खो दो तो सिर्फ एक कहानी हूं मैं।
3: पंक्ति यात्रा।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
6: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
8: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
2: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
8: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
2: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
9: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
10: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
9: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेड़ूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
11: बिना बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
12: जैसे संगीत बिना गीत के,
11: पर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
12: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।

0: जाना, क्योंकि वापस यही है आना।
1: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: अरे सुनो
3: गलत
2: तो,
3: है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
1: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
4: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
1: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
5: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: व्हाट अ बिजी डे।
1: डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ है?
0: That's very bed rest type question. As a doctor, I would say, जहाँ गद्दा और तकिया मिल जाए वहीं सबसे ज्यादा सोना हो जाएगा यार।
2: Stupid.
0: मुझे तो गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो अपने टॉमी के बगल में सो जाता हूँ, है ना टॉमी?
3: 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी।
0: ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।

0: हेलो दीदी, सुना ना, सब्जी दाल बनावे के बा हमके। हमरा तनिको मालूम नहीं के कि कैसे बनी।
1: कौनो बात नहीं के, सुना, एगो काम कर।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: क्या दूंगा
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले

0: नथिंग। व्हाट अ बिजी डे।
1: डॉक्टर साहब, ये सूरज के निकलते ही प्रकाश कहाँ से आ जाता है?
0: व्हाट अ लाइटनिंग क्वेश्चन। देखो यार, प्रकाश सूरज का दोस्त है, तो यार सूरज के निकलते प्रकाश भी निकल जाता है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
2: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पंक्ति यात्रा।
2: मेरी चाय की प्याली में

0: चादर में,
1: मेरी सिलवटों में, बिस्तर में
0: तुम और तुम्हारी यादें हैं। मेरी नींद में,
1: इंतजार में,
0: मेरी बेचैनी में,
1: करार में,
0: मेरी तड़प में,
1: बयान में,
0: गली में,
1: मकान में
0: तुम
1: और तुम्हारी यादें हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ समीर अंजान द्वारा रचित है। पंक्ति यात्रा।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
5: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
6: महाराज अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
5: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
6: ड्रो आज्ञा महाराज।
5: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
6: महाराज इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
7: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
8: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
9: पक्का बनारसी।
10: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
11: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGHS योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
13: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
14: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
13: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
14: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
13: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
14: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुंचे इंटरनेशनल लेवल तक।
13: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
14: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
13: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
15: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
16: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
15: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
16: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
17: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
9: क्या बताऊं,

0: शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मेरिडियन हॉस्पिटल प्लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: अरे सुनो
3: गलत है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
6: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

हाँ भाई, तो आ गया स्वाद। 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आपकी बंदी बनारसी, जिसका नाम है आरजे अमीशा। और शो का नाम तो आपको पता ही है ना, ये है इवनिंग गपशप, जो कि चलेगा 6 बजे से 9 बजे तक। और शो में होने वाली है बहुत ढेर सारी चटपटी बातचीत, गॉसिप्स, फिल्म रिव्यूज, ट्रैफिक अपडेट्स और इसके साथ ही हेल्थ टिप्स। तो भाई, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा ना। कहाँ, सिर्फ यहाँ और कहाँ, 91.2 FM हेलो बनारस। सुनते रहो क्योंकि ये है पक्का बनारसी।

किसी का

0: कश्यप।
1: हाँ भाई, तो कैसे हैं आप सब? हेलो बनारस को दोस्तों किया है आप सभी ने ट्यून इन, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ आपकी बंदी बनारसी आरजे अमीषा। और भाई आप लोगों की ही यही शिकायत रहती है कि भाई हमें अपडेट नहीं मिल पाता कि क्या हो रहा है हमारे बनारस में, कुछ पता ही नहीं चल पाता कि इतनी तेजी से डेवलपमेंट होता है, कई सारे रूल्स बदल जाते हैं, कई सारे रेगुलेशंस बदल जाते हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। तो भाई इसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढेर सारी वाराणसी की अपडेट्स। तो सबसे पहली अपडेट ये है दोस्तों कि जो राजघाट पुल है ना, वहां पर चल रहा है मरम्मत का काम और कुछ दिनों तक वो रहेगा बंद, तो आपको अल्टरनेटिव रूट वहां से लेकर जाना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मीट की और फिश की जो दुकानें हैं वो वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको शिफ्ट करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, जिन्हें जोन्स बनाए जाएंगे उसमें शिफ्ट किया जाएगा शहर के बाहरी हिस्सों में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 जून को है हमारा इंटरनेशनल योगा डे, तो उसकी ही तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। नमो घाट पे आप देख सकते हो कि पहले से एकदम प्रैक्टिस वैक्टिस चालू हो चुकी है और शहर में कई सारे जगह लोग जो है ना योगा डे को लेकर अपनी तैयारियां स्टार्ट कर चुके हैं। तो वही अगर आप भी योगा डे से रिलेटेड अपनी तैयारियां कर रहे हो या फिर इन न्यूज में से आपको कोई न्यूज नहीं पता थी ना, तो आप पता कर लो और सुनते रहो 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
4: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना, तो तैयार हो जाइए। मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
5: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MS

0: सुन्ना सिंह अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
1: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
0: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
1: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
0: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
1: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
0: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
1: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
4: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
6: पंक्ति यात्रा।
7: मेरी चाय की प्याली में, सुबह की हल्की लाली में,
6: मेरे दिन में, दोपहर में, शामों रात, हर पहर में,
7: मेरी दुआ में, ख्यालों में,
6: मेरे जवाबों में, सवालों में,
7: तुम और तुम्हारी यादें हैं। मेरे मोबाइल फोन में, SMS रिंगटोन में,
6: कैमरे की तन्हाई में, ख्वाबों की परछाई में,
7: तुम और तुम्हारी यादें हैं। मेरी दीवानगी के आलम में, मेरे आवारगी के मौसम में,
6: भीड़ में, अकेले में, यादों के मेले में, तुम और तुम्हारी यादें हैं।
7: मेरे तकिए में, चादर में,
6: मेरी सिलवटों में, बिस्तर में,
7: तुम और तुम्हारी यादें हैं। मेरी नींद में,
6: इंतजार में,
7: मेरी बेचैनी में,
6: करार में,
7: मेरी तड़प में,
6: बयान में,
7: गली में,
6: मकान में,
7: तुम
6: और तुम्हारी यादें हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ समीर अंजान द्वारा रचित है। पंक्ति यात्रा।
8: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
9: डॉक्टर साहब, ये प्रिस्क्रिप्शन में पहली दवा कौन सी लिखी है?
8: कंफ्यूजन, मैं तो बस पेन चला के देख रहा था कि ये पेन चल रहा है कि नहीं भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई?
10: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
2: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
1: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
3: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: अरे कौन सी बिस्किट है भाई, हमको भी तो खिला दो। 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आरजे अमीशा, और ये कॉर्पोरेट वाले मीम्स ना हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं। पुणे की एक एम्प्लॉय का पोस्ट ट्विटर पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके बॉस ने उसे रंगे हाथों बिस्कुट खाते हुए पकड़ लिया। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इस की उसके बॉस ने इसे अनप्रोफेशनल बिहेवियर मानने के बजाय कॉमेंट कर डाला की बेटा थोड़ा आप माइक ऑफ करके बिस्किट खाओ क्योंकि कुरूर कुरूर की आवाज आ रही है। फिर क्या, पोस्ट हो गई वायरल और लोगों ने अपने हिसाब से उस पर कॉमेंट करना स्टार्ट कर दिया। भाई मुझे तो ये देखकर स्कूल के दिन याद आ गए, जब हम बैक बेंच पर जाकर मैथ्स की क्लास में कुरकुरे चबाया करते थे। और यार काम में इतना दिमाग खर्च होता है तो भूख तो लगेगी ही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मस्त एकदम और काम करो। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: चुप चाप।
1: हाँ काम बाद में करना, लड़ाई पहले कर लो। 91.2 FM हेलो बनारस पर आपकी अमीशा इज बैक विद द बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी प्रेजेंट टाइम्स की, जो है संदीप वांगा रेड्डी और प्रकाश पादुकोण जी की सुपुत्री यानी दीपिका पादुकोण के बीच में। अपने वांगा जी की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी स्पिरिट के लीड कास्ट के लिए दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया गया था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, लेकिन सोर्सेज की माने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उनकी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बदलाव चाहती थी, जैसे कि वर्किंग आवर्स और उनकी क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेकर के। अंत में हुआ क्या कि वांगा जी को मजबूरन उनको रिप्लेस करना पड़ा अपनी भाभी नंबर 2 यानी तृप्ति डिमरी से। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो एक्टर और डायरेक्टर ही जाने, लेकिन हमें तो अब स्पिरिट का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि संदीप जी के साथ तृप्ति की ये दूसरी मूवी होने वाली है एनिमल के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। बाकी ऐसे ही फिल्मी गॉसिप्स के लिए सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।

अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आरजे अमीशा। और रिसेंटली अपने खलनायक AKA संजू बाबा का एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि राशा कौन है। मुंबई की बारिश के बीच में जब पैपराजी रवीना टंडन की बेटी यानी राशा थडानी की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए रुके हुए थे, तब ये इंसिडेंट हुआ। और ये वीडियो देख कर ना मुझे अपने दादा दादी की याद आ गई, जो घर के छोटे बच्चों का नाम हमेशा भूल जाते हैं। बात अगर राशा थडानी की करे तो उन्हें रिसेंटली आजाद मूवी में देखा गया था अमन देवगन के साथ। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो उतनी हिट नहीं रही, लेकिन इनके परफॉर्मेंस की पूरे बॉलीवुड में बहुत सराहना हुई। बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस नेपो किड के बारे में आपका क्या विचार है ये बात बताओ मुझे मेरे इंस्टाग्राम @RJAmisha पर। और सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: पक्का बनारसी.
2: पक्का बनारसी.
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पंक्ति यात्रा।
2: मैं जिसे ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूं। ये कौन सा फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूं, सच बताता हूं। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं।
1: पंक्ति यात्रा।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
7: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना, तो तैयार हो जाइए। मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
9: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
8: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
9: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति,
8: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
9: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
8: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
9: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
8: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
10: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। व्हाट अ बिजी डे।
11: डॉक्टर साहब, मुझे आकाश छूना है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं?
10: व्हाट अ पवन पंछी वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम्हें आकाश छूने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने घर के बाहर जाना है और दूसरे पड़ोस वाले आकाश को छू के आ जाना है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
9: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
12: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
9: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: गपशप।
1: यही सब आप लोग का अच्छा नहीं लगता है कि बैठने से पहले किराया नहीं पूछती हैं। 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आरजे अमीशा और ये दिक्कत तो भैया कॉन्स्टेंटली जो ऑटो वाले होते हैं और जो सवारियां होती हैं उनकी होती है बनारस में। लेकिन एक और दिक्कत है और वो है ट्रैफिक वाली दिक्कत, जिसको मैं ना अभी तुरंत से फटाफट से सॉल्व कर देती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस समय दुर्गा कुंड से होते हुए लंका या फिर सुंदरपुर वाले रूट पर जाना चाह रहे हैं ना, तो वहां पर आपकी जो गाड़ी है वो फंस सकती है और आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां है एकदम हैवी से हैवी ट्रैफिक। तो अगर उधर जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा समय और पेशेंस दोनों अपने साथ लेकर के जाना और पेट्रोल के पैसे भी ना एक्स्ट्रा रख लेना, क्योंकि बहुत लगने वाला है। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: और किसी महान व्यक्ति ने ये कहा है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेल प्लेबैक सिंगर्स में से एक यानी विशाल ददलानी ने अनाउंसमेंट कर दी है रिटायरमेंट की, वो भी इंडियन आइडल से। सिंगिंग शो इंडियन आइडल के 6 सीजन को सक्सेसफुली जज करने के बाद विशाल ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि शो के कमिटमेंट के चलते उनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही थी। और यार ब्रेक तो सभी डिजर्व करते हैं ना। अब भैया उनके इस ब्रेक के बाद मुझे तो उनके किसी नए गाने का बेसब्री से इंतजार है, पर आप इंतजार मत करो क्योंकि आपके लिए है नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारस। See you.

0: गपशप।
1: क्या इनकी शादी होने वाली थी? 91.2 FM हेलो बनारस पर बॉलीवुड के फॉरगॉटन रोमांटिक रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें ना, तो इन पांच कपल्स की जोड़ी ना आपको कम्प्लीटली हैरान कर सकती है। नंबर वन ऑन दी लिस्ट इज अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर। इक्वली ऊंचे खानदान से आने वाले इन दो एक्टर्स की साल 2000 लगभग में शादी होने वाली थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल डिफरेंसेस ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसा ही कुछ केस था अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन, लारा दत्ता एंड भूटानी मॉडल एक्टर केली जी, प्रियंका चोपड़ा और उनके शॉर्ट टर्म पार्टनर हरमन बाजवा एंड नन अदर देन अपने सल्लू भाई और फॉर्मर मिस इंडिया संगीता बिजलानी के बीच। और मैं आपको बता दूं कि इनके तो शादी के कार्ड तक बट गए थे, बट डेफिनेटली डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं था। बाय द वे, इस लिस्ट में से किस जोड़ी ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया है ये बात बताओ मुझे मेरी इंस्टाग्राम @rjamisha पर। और सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस, काहे से कि ये है पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: 91.2 FM. Hello Banaras पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी. Oh ho ho ho ho, what a busy day.
3: डॉक्टर साहब, मेरे फोन का सिम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं?
2: Oh, that is very simple question. देखो यार, अभी तुम्हारा सिम बहुत छोटा सा है. जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, फिर वो चलना भी सीख जाएगा भाई.
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी.
2: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई.
5: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान. डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक. किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से. कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर. आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM. जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास.
6: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज.

0: और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवायोजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
5: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
4: अरे बेटा,
5: ये क्या कर रहे हो अंकल?
4: अरे सुनो
5: गलत है ये।
4: अरे सुनो बेटा
5: अंकल।
6: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
7: बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई।
8: प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है।
9: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
12: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
11: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
13: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
4: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
14: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
4: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
15: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
16: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

ऑनेस्टी ना हमेशा बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए और वो भी बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। 91.2 एफएम हेलो बनारस पर मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अमीशा और ये है शो का आखिरी लम्हा। और यार सच्चाई और अच्छाई जितनी भी अंडररेटेड हो ना आज के जमाने में, लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। ऑनेस्टी वो चाहे आपके काम में हो, आपके रिश्ते में हो, आपको वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर ध्यान मत दो और आप अपना काम करते रहो और बाकी सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी। गुड नाइट गाइस।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हेलो बनारस 91.2 FM। मैं आपका दोस्त सुधांशु और शुरू हो चुका है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात करेंगे 1974 की रिलीज हुई फिल्म आपकी कसम। जी हाँ, एक सुपरहिट भारतीय फिल्म जिसे जे ओम प्रकाश यानी जय ओम प्रकाश के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बनी। इसमें मुख्य भूमिका निभाई काका बोले तो राजेश खन्ना और मुमताज रे, साथ ही में थे संजीव कुमार। इस फिल्म का संगीत दिया आर डी बर्मन यानी पंचम दाने।

आपकी कसम फिल्म मलयालम फिल्म वाजवे मायम 1970 की रीमेक थी, लेकिन इसका क्लाइमेक्स सीन मलयालम फिल्म से कुछ अलग था। जे ओम प्रकाश के डायरेक्शन में बनी ये पहली फिल्म थी जिसमें वो निर्माता भी थे। आपकी कसम फिल्म राजेश खन्ना और मुमताज के साथ काम करते हुए सातवीं लगातार सुपरहिट फिल्म बनी। फिल्म में राजेश खन्ना के किरदार कमल के मन में अपनी पत्नी सुनीता की वफादारी पर कुछ शक पैदा हो जाता है, जो कहानी का मुख्य मोड़ है। अपने समय के हिसाब से ये एक बोल्ड और अनोखी फिल्म मानी जाती है, जो विश्वास और इमोशंस के विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। इस फिल्म की कहानी को बाद में तेलुगु में भी बनाया गया। तो आज चलेंगे बातें पर्दे के पीछे में, आपकी कसम के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, विद आरजे सुधांशु, बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: 出去。बॉलीवुड के गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु. ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये है पक्का बनारसी.
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु. चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1974 की रिलीज हुई फिल्म आपकी कसम. जी हाँ, जिसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जे ओम प्रकाश, साथ ही काका की बात करें तो एज ए हीरो, और साथ में मुमताज और संजीव कुमार. फिल्म की बात करें तो मुमताज की ये आखिरी हिट फिल्म थी, क्योंकि शादी के बाद मुमताज ने फिल्मों से दूरी बना ली और आपकी कसम उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्मों में गिनी जाती है. राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी हमेशा हिट रही और इस फिल्म में भी उनकी केमिस्ट्री खूब चली. इस फिल्म की संगीत रचना की राहुल देव बर्मन, यानी कि पंचम दाने, और इसका एक बड़ा ही खूबसूरत गाना

जब इस गाने की शूटिंग हो रही थी कश्मीर की असली बर्फीली वादियों में, तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि मुमताज को शॉल ओढ़कर सीन के बीच बीच में गर्म पानी पीना पड़ता था। इस फिल्म ने राजेश खन्ना की रोमांटिक और इमोशनल हीरो की इमेज को और मजबूत किया। दिलचस्प बात यह है कि राजेश खन्ना का रोल थोड़ा नेगेटिव शेड लिए हुए था, पजेसिव और शक करने वाला पति, जो उनके करियर में कम ही देखने को मिलता है। तो बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी पर्दे के पीछे में। विद आरजे सुधांशु, बोले तो बस यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में बात हो रही है 1974 की रिलीज हुई फिल्म आपकी कसम, जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जे ओम प्रकाश। मुख्य कलाकार राजेश खन्ना, मुमताज, संजीव कुमार। संगीत दिया आर डी बर्मन साहब ने और गीतकार आनंद बख्शी। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म से जुड़ी हुई। जे ओम प्रकाश ने जब एक और गाना बढ़ाने को कहा आर डी बर्मन इसके संगीतकार से, तो आर डी बर्मन ने यही कहा कि 50,000 रुपीज और लगेंगे क्योंकि इसमें काम ज्यादा होगा। ऐसे में उन्होंने दे तो दिए पैसे, लेकिन इस बात का ताना मारने लगे, कई बार इनके ऊपर कमेंट कर दिया। जब किशोर दा को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको पब्लिकली एक बार क्रू मेंबर के सामने जे ओम प्रकाश ने पंचम दा के ऊपर कमेंट कर दिया कि 50,000 रुपए ले लिए। इस बात से इतने आहत हुए पंचम दा कुछ बोल तो नहीं सके, लेकिन जब किशोर दा को ये बात पता चली तो उन्होंने जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उस गाने में बिना प्रोड्यूसर को बताए उन्होंने ये बात उसमें पब्लिकली गा दी। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप भी सुन सकते हैं इसी गाने के लास्ट में। गीत के बोल थे जय जय शिव।

इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश को तब पता चली जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी थी और गाने की अंतिम लाइन में बस किशोर कुमार साहब ने यही कहा है कि बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्च किए हैं। तो ये रही किशोर दा के बदला लेने की कला कि जे ओम प्रकाश ने तो आरडी बर्मन को अपने कुछ लोगों के सामने कहा, लेकिन किशोर दा ने इसको पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि इन्होंने 50,000 रुपए दिए हैं। ये बहुत बड़ा कटाक्ष लगा जे ओम प्रकाश को। तो बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन आज का सवाल हम आपको बता दें कि संजीव कुमार का नाम क्या है आपकी कसम मूवी में। अगर आपको पता है तो हमें आप 9839912912 पर व्हाट्सएप कीजिए, हम बताएंगे विनर का नाम अगले अंक में पर्दे के पीछे में। फिलहाल सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु पर्दे के पीछे, क्योंकि भैया बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरीडे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। में आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1974 की रिलीज हुई फिल्म आपकी कसम, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जय ओम प्रकाश, संगीतकार आरडी बर्मन और गीतकार की बात करें तो आनंद बख्शी। इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना,

ये गाना फिल्म के सबसे फिलोसॉफिकल और इमोशनल गीतों में से है। आनंद बख्शी साहब ने इस गाने के बोल ऐसे लिखे कि ये गाना जिंदगी का एक गहरा संदेश बन जाए, और रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर कुमार साहब ने इसे बेहद सादगी और इमोशनल टच के साथ गाया, जिसकी फील आज भी आप फील कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को सिंगल टेक में रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि किशोर दा का पहला ही प्रयास इतना असरदार था कि दोबारा टेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और गाने के फिल्मांकन के समय राजेश खन्ना की इमोशनल परफॉर्मेंस इसे एक आइकॉनिक सॉन्ग बना दिया। लिहाजा आपकी कसम, भले ही सुपर डुपर हिट फिल्म नहीं बन सकी, लेकिन इसके गानों ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन आज का सवाल हम आपको बता दें कि संजीव कुमार का नाम क्या है आपकी कसम मूवी में। अगर आपको पता है तो हमें आप 9839912912 पर व्हाट्सएप कीजिए, हम बताएंगे विनर का नाम अगले अंक में। पर्दे के पीछे में बातें आज आपकी कसम के साथ बस इतनी ही। पर्दे के पीछे में हम लेकर हाजिर होंगे आपके सामने एक नया कलाकार, एक नया व्यक्तित्व। तब तक सुनते रहिए 91.2 FM। हेलो बनारस, विद आरजे सुधांशु, बोले तो बस यही है पक्का बनारसी।

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे।
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल?
0: सुनो
1: गलत
0: तो,
1: है ये।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
6: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
5: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
6: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
5: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
6: साथ ही सेवायोजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
5: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
6: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
5: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
1: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीड़ फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: घर सूर्य घर।
13: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार।
14: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
13: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
14: तो सुनना ना भूले। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
15: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
16: बेटा, A+B का होल स्क्वायर क्या है?
12: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
0: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
16: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
0: क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
17: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
18: अरे भाई और तेज भागा।
2: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़ गुरु

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: लड़का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु घुमक्कड़ चचा भोकाली रईसी ठाट।

0: बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: कंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
2: 91.2 FM, Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
2: पक्का बनारसी।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु गुमक्कड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
1: Banaras.
4: 91.2 FM,

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम्म और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धाम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: कंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
1: Allah,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
3: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़ पक्का।

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बहुत करीब बनारस 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: हेलो बनारस 91.2 FM। हेलो बनारस।
0: लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
1: Allah,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
2: Hello. 91.2 FM. Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: Hello, Banaras.
1: 91.2 FM. Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
1: Allah,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: लड़का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: आबादी अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Allad pakka.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.